0: You're listening to Radio Surabhi 107.9 FM HD3.
1: ये गाना लड़कियों के लिए नहीं है. Please, listen. Please.
2: Bob, yo, head. Bob, yo, head.
3: कोड़ी बाय लक्ष्मण दे.
4: Yo.
3: कोड़ी बाय लक्ष्मण.
4: अरे.